0: रेडिओ मनभावन 90.8 FM प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला अध्यात्म मनशांती आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भारंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी केसी सोसायटी संचलित मुजीजेठा महाविद्यालय जळगाव ऐकायला विसरू नका 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योग सूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मनभावन 90.8 FM वर ऑलवेज हार्ट टच
1: नमस्कार दोस्तों 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने गुरु की उस कृपा को समझा जिसने हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाकर हमें अनंत के दर्शन कराए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शिष्य को वह अनंत सत्य दिख जाता है तब शिष्य का अपना अस्तित्व कहाँ जाता है? क्या वह गुरु से अलग बना रहता है या कहीं खो जाता है? आज का दोहा मिलन की उस पराकाष्ठा का है जहाँ दो मिट जाते हैं और केवल एक शेष रहता है। श्रोताओं, कबीर आज जिस मिलन की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण मेल नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा में या यूं कहे कि शिष्य का गुरु के ज्ञान में विलन हो जाना है। कबीर ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है, पानी और नमक का। उनका दोहा है, कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया आटे लून, जाति पाति कुल सब गया नाव धरोगे कौन।

0: कबीर इस दोहे से समझा रहे हैं कि इसका मर्म अद्वैत की उस स्थिति में छिपा है जहाँ पहुँचकर द्वैत यानी दो का भाव मिट जाता है। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसा गर्वा यानी गौरवशाली आत्मज्ञानी और तत्वज्ञान से पूर्ण गुरु मिल गए जिनकी कृपा ने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उनके ज्ञान के स्पर्श से मैं शुद्ध चैतन्य में एक इस कदर लीन हो गया कि अब मुझ में और उस विराट सत्य में कोई भेद नहीं बचा। यहाँ कबीर एक बहुत ही सरल लेकिन अद्भुत उदाहरण देते हैं, रली गया आटे लून, जैसे आटे में नमक मिलकर एक हो जाता है और उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही कबीर का अपना स्व अर्थात अहंकार और अस्तित्व गुरु के ज्ञान में विलीन हो गया। यहाँ साधक गुरु और ईश्वर ये तीनों एक हो गए हैं। जब नमक पानी या आटे में घुलता है तो वह अपनी पहचान खोकर उस पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह जब शिष्य को तत्वज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जाति पाति कुल और यहाँ तक कि उसका नाम भी अर्थहीन हो जाता है। कबीर पूछते हैं, जब मैं बचा ही नहीं तो अब तुम मेरा क्या नाम रखोगे? अब तो मैं वही हूँ जो मेरे गुरु हैं, जो यह ईश्वर हैं। यह साधारणीकरण की जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, वह विश्व का हो जाता है। अब वह न हिंदू है न मुसलमान, न ऊंचा है न नीचा, वह तो बस उस ज्ञान का हिस्सा है। दोस्तों, हम अपनी पहचान को लेकर कितने सजग रहते हैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा खानदान, लेकिन कबीर सिखाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इन छोटी पहचानों को किसी महान उद्देश्य या महान गुरु के ज्ञान में विलीन कर देते हैं। तो विचार कीजिए, क्या आप नमक की तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं या पानी में घुलकर अमृत हो जाना चाहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: पात तगता, यू एक्सेप्टेड द की प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड एक्शन and the sub-principles also, but you refuse to attach theistic approach. Pre-planning of God with the principle of cause and action. You refuse the cycle of the soul, and instead of salvation and liberation, you accepted the scientifically proven principle of Nibbana. The central point of your teaching is mind. Mind and its perception is at the forefront of everything. So, mind, its perception, the rights of mind are important. Mind is affected by virtuous or vicious external factors. Whatever is vicious also takes birth in the mind. Speech with impure mind accompany bad action, like the cart wheels that follow bulls. So, purity of mind, purity of chitta is the essence of religion. Hence, mind be guarded, made conscientious through Arya Ashtangic practices. Truly, religion doesn't lay in the scriptures. It lays in conduct along with the purity of mind. बा तथा गता फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैन यू गेव इम्पोर्टेंस टू द वे ऑफ कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग यू डिक्लेयर्ड 10 points कैरेक्टर कॉन्फर्मेंट निग्लेक्ट नैष्कर्म वीर्य पीस ट्रुथ अधिष्ठान कंपैशन एंड फ्रेंडशिप कैरेक्टर मीन्स कॉन्शियस माइंड बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स फेयर थिंग्स वन इज टू बी अशेम्ड ऑफ क्राइंग कैरेक्टर मीन्स sinlessness in action material pleasure is renounced in the virtue and the state of haste or expectation is avoided charity is practiced for the welfare of the others perhaps at the cost of life while with right efforts seed is strengthened with all the strength the task undertaken be fulfilled with bravery knowledge is attained with concentrated perception and conscious in it is understood that's why the discriminant of pursuit of knowledge strengthens the power to recognize the difference between depression and detachment through practice NY doesn't extinguish through NY. It is silenced through mercy. And peace means mercy. Strong determination lays in the foundation. In the same way, loving mercy lays in compassion. There is love for the rival also. Catering friendliness. Fraternity means friendship. Neglect is a different kind of neutrality. Form that of depression. Neglect means detachment or lack of interest, disinterest, state of mind. Neglect is not distracted by achievement and continues to strive for absolutes. With the development of the path of character, mind is strengthened because consciousness. Man gets support of rights for the cultivation of culture. Thus, truth and knowledge are conservations for rationalism for the human being for a pure culture.
1: Hi, me RJ Swara. Apan tune kele Radio Manbhavan 90.8 FM always heart touching.
3: Namaskar. Om Shanti. Sant Shrestha Gyaneshwar Maharaj Mauli. उनका पसायदान उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं और यह पसायदान की दूसरी पंक्ति लाइन या ओवी जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में तो जे खड़ांची व्यंकटी सांडो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की खल मीन्स क्या है दुष्ट या बुराई और बुरा आदमी या बुरी व्यक्ति उसके अंदर की बुराई निकल गई तो क्या होगा इसके ऊपर भी हमने चर्चा की तो यहां माउली कहते हैं कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स जो बुराई है टेढ़ा है टेढ़ेपना जो है व्यंकटी मीन्स टेढ़ापन जो मन में टेढ़ापन है सीधा सरल होता है तो कितना अच्छा लगता है तो ये टेढ़ापन निकलने के बाद क्या भरना है इसके बारे में माउली ने कहा है तया सत्कर्मी रति वाढ़ो सत्कर्म क्या है उसके बारे में भी हमने चिंतन किया लेकिन मुझे इस समय ऐसे लगता है कि तया सत्कर्मी रति वाढ़ो रति मीन्स इंटरेस्ट रत होना रममाण होना खुशी से होना चाहिए सत्कर्म जो है वो अच्छा कर्म हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं कोई खुशी से नहीं करता बुरा कर्म कभी कभी प्रसंगवश हो जाता है कभी कभी संस्कार के वश हो जाता है और कभी कभी विकारों के वश हो जाता है लेकिन दिल से अगर किसी को पूछे तो हर कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, लेकिन वो होता नहीं है। और जब दुष्कर्म होता है तो उनको मुझे नहीं लगता बहुत खुशी होती होगी। मन में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली वो बोलते हैं ना, मन खाता रहता है, मन में कहीं ना कहीं खिटपिट रहती ही है अंदर। तो सत्कर्मी रति वाढ़ो मीन्स खुशी से हमें भगवान की भक्ति या भगवान को याद करना या भगवान से संवाद करना, डायलॉग, ये खुशी से होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं या भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं या नमस्कार करते हैं, वो डर के मारे करते हैं। इसलिए देखिए कैसे इंग्लिश में कहावतें भी कैसे हैं। अगर हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या कहते हैं दूसरों को, यस आई एम गॉड फियरिंग पर्सन, गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला। हमें डर लगता है भगवान से। और फिर अगर हम भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं तो इज इट गुड? आप सोचो, आप पिता हो या माता हो और आपके बच्चे हैं और ये बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डर से, कहीं आप उनको बिगाड़ ना दो, कहीं आप उनको पनिश ना करो, इसी डर के मारे अगर वो प्यार करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये हम सोचते नहीं है और इसलिए कहते हैं आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन। आजकल ये भी बहुत चलता है, आप व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, क्या होता है, कंपल्सिव मैसेजेस। आप ये मैसेज 100 लोगों को भेज दो, 50 लोगों को भेज दो, 25 लोगों को भेज दो, 10 लोगों को भेज दो, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। अगर नहीं भेजोगे तो डैश डैश डैश क्या हो गया। हर कोई मन में जानता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं गलती से ऐसा सचमुच ना हो, तो उससे क्या करे, भेज दो लोगों को, भेज दो, दो तीन ग्रुप बनाओ, लोगों को भेज दो, और फिर हर वही आदमी फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो ये डर फैल जाता है। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो सुख फैलाना है, आनंद फैलाना है, शांति फैलाना है। और ये सत्कर्म में रति वाड़ो, ज्ञानदेव ने, माउली ने जो कहा है, सत्कर्म में रति होनी चाहिए, रत होना चाहिए, मेरा मन उसमें रत होना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए। ये खुशी भगवान को जब हम सही मायने जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं, तब होगी। सिर्फ डर रहेगा तो खुशी नहीं होगी। हम करेंगे जरूर, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन प्यार कम और डर ज्यादा, उससे कुछ फायदा होगा? अपने आप सोचिए, कंपेयर करिए खुद से। अगर कोई डर के मारे आपसे प्यार करता है तो कैसे लगेगा? तो वही चीज अगर भगवान को भी लगती है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सत्कर्मी रति वाढ़ो, और जैसे सत्कर्म में रत होता है, मन मेरा रत हो जाता है, तो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। भूत मीन्स भूत मात्र, ह्यूमन बीइंग, जो जिसके बारे में हमने चर्चा की, बीइंग क्या है, ह्यूमन क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो एक दूसरे के तरफ प्यार, हम प्यार का भी बहुत बदनाम कर दिया है, प्यार को हमने बदनाम किया है। प्यार मींस एक ही हम देखते हैं, प्रेम, बॉडी अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण, नहीं, माँ और बेटे का प्यार, पिता और पुत्री का प्यार, इतना पवित्र प्यार है, और वो जो प्यार है इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व गाया जाता है। विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व, खाली भारत बंधुत्व नहीं है। हम ये भी कहते हैं जब शपथ लेते हैं तब कहते हैं भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, कहते हैं ना बांधव। तो हम एक दूसरे के भाई बहन है, ये रिश्ता है, ये हमने कहीं ना कहीं मान्य किया है, लेकिन खुली दिल से हम मान्य नहीं करते। भाई और बहनों एड्रेस करते हैं सभा में, जब एड्रेस करते हैं तो भाई और बहनों कहते हैं, रक्षा बांधते समय भी भाई और बहन कहते हैं, लेकिन खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, और इसलिए प्यार जो है वो फैलता नहीं। भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, मैत्री होनी चाहिए। मित्रता जो है उसमें प्यूरिटी है, मित्रता जो है उसमें खुशी है, चाहे वो मित्रता लड़का और लड़की, मेल और फीमेल उनकी भी हो, क्योंकि उनके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ है, श्री कृष्ण और द्रौपदी। श्री कृष्ण और द्रौपदी, उनका जो नाता था वो सखा और सखी का था, और सखा और सखी का जो नाता है वो बहुत पवित्र है, वो बहन से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मित्रता जो है, मैत्री जो है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तब अपेक्षा आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं रिश्ते जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, देयर इज नो चॉइस। आपके कोई भी रिश्ते हो वो आपको चॉइस नहीं है, लेकिन मैत्री, मैत्री जो है, मित्र, मैत्र, फ्रेंडशिप, यू हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस। इसलिए फ्रेंडशिप में जो मजा है वो अजीब सा है, बहुत अद्भुत है। तो ये मैत्र जीवन से उसके बारे में मावली ने कहा है, भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। तो एक बार व्यंकटी निकल गई, फिर से हम रिपीट करते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। एक बार व्यंकटी दुष्टता निकल गई और सत्कर्म के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, सारी दुनिया जो है मैत्र, मित्रता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, मधुरता आएगी और रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और यही तो हमें चाहिए। स्वर्ग का जो रोड मैप माउली ने जो बनाया है उसमें पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है मित्रता, आपस के रिश्ते जो है मधुर होने चाहिए, संबंध मधुर होने चाहिए, और यही माउली ने मांगा है पसायदान में। अभी अगला जो श्लोक है, आप अगली जो ओवी है, अगला जो लाइनर है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
4: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
5: मना वासना दुष्ट कामान ये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि नकोरी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहाँ देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
0: है? व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: No, as a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No, I said नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
0: उनके कहने,
1: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
0: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे, वो यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
1: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन? तो एक दिन नहीं
0: करते, अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
1: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
0: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
1: हाँ, तो एक घंटा, एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हरेक के बारे में, हरेक के बारे में, हरेक सिचुएशन के बारे में. एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील. आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हरेक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल. यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस. आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग आई एम थिंकिंग लाइक दिस. यू नो, बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे
0: एक्चुअली.
1: सोच तो सारा
0: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ.
1: बात सोचने की हो रही है. जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में. तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है everyone is okay, एक घंटा I am not going to judge, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck, you know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this, so it's not everyone sucking, I am giving my energy
0: out
1: to everyone
0: unnecessarily.
1: Yeah, I'm giving it out, and after giving it out I get, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं. और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा. इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते, तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी. एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे. तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है. फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ. मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है. आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स,
0: सो मच आउट.
1: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती. तो जब बहुत ज्यादा और चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता. थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें.
0: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
1: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा. एक घंटा सोचेंगे,
0: क्या फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा.
1: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
0: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता.
1: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा. सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
0: ध्यान नहीं
1: देखा नहीं है. तो जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन. राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन. सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग. See, no one should do it unnaturally. Yes, yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना. आप अपना नॉर्मल चलो, जैसे आप चल रहे हो. सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो. और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके. For one hour, I am not going to create.
0: Yeah, ऐसा सोचें कि वो प्लीज ऐसा करे, because we have to be very, very clear. कि हमें क्या नहीं सोचना
1: है. Absolutely. और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे है
0: अच्छे.
1: It's okay. Accept, accept. Acceptance doesn't mean कि I agree with you.
0: वही मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटालिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन, क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता यह है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
1: यू नो, इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड negative, it's only that we are different.
0: Yeah, because there's nothing like negative.
1: We are different. मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है,
0: गलत हो गया,
1: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर.
0: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए, कि टाइम पे आना तो इट्स अ
1: सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है. इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने, व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड their own culture, their own way of living. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम, बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे.
0: देखा
1: ये राइट है, वो वाला रॉन्ग है या ये वाला राइट है. नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट. जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है. सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So when I create this thought about anyone कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hai. Between a parent and a child, oh, ye bahut yes, critical hai.
0: Even husband wife, you know.
1: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents bahut zyada ye authority ke saath har time hum chalte ki hum sahi hai, bacche galat hai. See, again, intention bahut achhi hai. Kai baar intention bahut achhi hoti hai, lekin usko agar hame kisi ko kuch sikhana hai, matlab unko empower karna hai na, lekin jagah hum ye energy bhejte hain कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे हैं.
0: अगर कोई drugs ले रहा है या smoke कर रहा है या drink कर रहा है, how do we take it, you know? This is again, it's very difficult because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop.
1: He needs to change is a different energy and he is bad is a different energy.
0: Actually, I consciously tried to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
1: Yeah, this, अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
0: और हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था,
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला, आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
0: rejection,
1: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है, ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं. ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए, आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो.
0: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप, यस.
1: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग,
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
0: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
1: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है, एक तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. 25 टू 30 थॉट्स
0: पर मिनट,
1: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी,
0: It's all waste, actually. maximum times, you know.
1: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 टू 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते, तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ ना वो ठीक हो गया, से आई एम वेरी हैप्पी. यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीजों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती
0: है. तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम से वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
1: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. I am going through life today with the focus कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. Just change the focus one day कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
0: इसको बाहर नहीं जाने देना,
1: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
0: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
1: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया
0: तो जब वो नहीं होगी तो आप.
1: हाँ, और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
0: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो
1: इट गिव्स अ वेरी
0: पिट ऑफ माय स्टमक, ऐसे कुछ फील होता है. चाहे डर लग रहा है, चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
1: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा
0: शरीर पर.
1: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल. एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है. Physiology पर तो दिखाई दे रहा ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी ये stability को नहीं खोना है. इट डजंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं. कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल. वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज Do everything. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ. Disturb हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का experiment करना है. We always try this as a 24-hour experiment. 24 घंटे इसको try करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास. And कुछ भी then means कुछ भी. कुछ भी. Just one day I will not get disturbed. Just one day. I will do everything just with this remembrance. आज एक दिन stable. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं. किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये. तो ये है सारी सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है. सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि, कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से. इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव. डेफिनेटली.
0: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है एक्चुअली, कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे. ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खुला निमंत्रण हर बार की तरह। तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। सिस्टर शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
1: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें। लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बींग। आई, द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, हैज अ चॉइस। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी। चाहे कोई कुछ भी कहे, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग। ओम शांति,
0: ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, इन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुलम द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुलम 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुलम के साथ हा शेतकरी बांधवांसाठीचा खास कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुलम ने प्रसारित केला होता। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।

0: रेडिओ मन भवन 90.8 FM प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला अध्यात्म मनशांती आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भरंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी केसी सोसायटी संचालित मूजजेठा महाविद्यालय जळगाव ऐकायला विसरू नका 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योग सूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मन भवन 90.8 FM वर ऑलवेज हार्ट टचिंग
1: नमस्कार दोस्तों 90.8 FM रेडियो मन भवन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने गुरु की उस कृपा को समझा जिसने हमारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाकर हमें अनंत के दर्शन कराए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शिष्य को वह अनंत सत्य दिख जाता है तब शिष्य का अपना अस्तित्व कहाँ जाता है? क्या वह गुरु से अलग बना रहता है या कहीं खो जाता है? आज का दोहा मिलन की उस पराकाष्ठा का है जहाँ दो मिट जाते हैं और केवल एक शेष रहता है। श्रोताओं, कबीर आज जिस मिलन की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण मेल नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा में या यूं कहे कि शिष्य का गुरु के ज्ञान में विलन हो जाना है। कबीर ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है, पानी और नमक का। उनका दोहा है, कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लून, जाति पाती कुल सब गया, नाव धरोगे कौन।

0: कबीर इस दोहे से समझा रहे हैं कि इसका मर्म अद्वैत की उस स्थिति में छिपा है जहाँ पहुँचकर द्वैत यानी दो का भाव मिट जाता है। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसा गरवा यानी गौरवशाली आत्मज्ञानी और तत्वज्ञान से पूर्ण गुरु मिल गए जिनकी कृपा ने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उनके ज्ञान के स्पर्श से मैं शुद्ध चैतन्य में एक इस कदर लीन हो गया कि अब मुझ में और उस विराट सत्य में कोई भेद नहीं बचा। यहाँ कबीर एक बहुत ही सरल लेकिन अद्भुत उदाहरण देते हैं, रली गया आटे लून, जैसे आटे में नमक मिलकर एक हो जाता है और उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही कबीर का अपना स्व अर्थात अहंकार और अस्तित्व गुरु के ज्ञान में विलीन हो गया। यहाँ साधक गुरु और ईश्वर ये तीनों एक हो गए हैं। जब नमक पानी या आटे में घुलता है तो वह अपनी पहचान खोकर उस पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह जब शिष्य को तत्वज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जाति पाति कुल और यहाँ तक कि उसका नाम भी अर्थहीन हो जाता है। कबीर पूछते हैं, जब मैं बचा ही नहीं तो अब तुम मेरा क्या नाम रखोगे? अब तो मैं वही हूँ जो मेरे गुरु हैं, जो यह ईश्वर हैं। यह साधारणीकरण की जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, वह विश्व का हो जाता है। अब वह न हिंदू है न मुसलमान, न ऊंचा है न नीचा, वह तो बस उस ज्ञान का हिस्सा है। दोस्तों, हम अपनी पहचान को लेकर कितने सजग रहते हैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा खानदान। लेकिन कबीर सिखाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इन छोटी पहचानों को किसी महान उद्देश्य या महान गुरु के ज्ञान में विलीन कर देते हैं। तो विचार कीजिए, क्या आप नमक की तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं या पानी में घुलकर अमृत हो जाना चाहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
2: पाततगता, यू एक्सेप्टेड द की प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड एक्शन and the sub-principles also, but you refuse to attach theistic approach. Pre-planning of God with the principle of cause and action. You refuse the cycle of the soul, and instead of salvation and liberation, you accepted the scientifically proven principle of Nibbana. The central point of your teaching is mind. Mind and its perception is at the forefront of everything. So, mind, its perception, the rights of mind are important. Mind is affected by virtuous or vicious external factors. Whatever is vicious also takes birth in the mind. Speech with impure mind accompany bad action, like the cart wheels that follow bulls. So, purity of mind, purity of chitta is the essence of religion. Hence, mind be guarded, made conscientious through Arya Ashtangic practices. Truly, religion doesn't lay in the scriptures. It lays in conduct along with the purity of mind. Bhatatagata, for the progress of man, you gave importance to the way of character. For character building, you declared 10 points. Character, conferment, neglect, naishkarmya, virya, peace, truth, adhisthan, compassion, and friendship. Character means conscious. Mind be inclined towards fair things. One is to be ashamed of crying. Character means sinlessness in action. Material pleasure is renounced in the virtue, and the state of haste or expectation is avoided. Charity is practiced for the welfare of the others. Perhaps at the cost of life, while with right efforts, seed is strengthened with all the strength. The task undertaken be fulfilled with bravery. Knowledge is attained with concentrated perception, and conscious in it is understood. That's why the discriminant of pursuit of knowledge strengthens the power to recognize the difference between depression and detachment. Through practice, envy doesn't extinguish through envy. It is silenced through mercy, and peace means mercy. Strong determination lays in the foundation. In the same way, loving mercy lays in compassion. There is love for the rival also. Catering friendliness, fraternity means friendship. Neglect is a different kind of neutrality form that of depression. Neglect means detachment or lack of interest, disinterest, state of mind. Neglect is not distracted by achievement and continues to strive for absolutes. With the development of the path of character, mind is strengthened because consciousness. Man gets support of rights for the cultivation of culture. Thus, truth and knowledge are conservations for rationalism for the human being, for a pure culture.
1: Hi, आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
3: नमस्कार, ओम शांती. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माऊली, उनका पसायदान, उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. और यह पसायदान की दूसरी पंक्ति, लाइन या ओवी, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में. तो जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की. खल मीन्स क्या है? दुष्ट या बुराई, और बुरा आदमी या बुरी व्यक्ति, उसके अंदर की बुराई निकल गई तो क्या होगा, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की. तो यहां माउली कहते हैं कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स जो बुराई है, टेढ़ा है, टेढ़ेपना जो है. व्यंकटी मीन्स टेढ़ापन, जो मन में टेढ़ापन है, सीधा सरल होता है तो कितना अच्छा लगता है. तो ये टेढ़ापन निकलने के बाद क्या भरना है, इसके बारे में माउली ने कहा है. तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, सत्कर्म क्या है उसके बारे में भी हमने चिंतन किया. लेकिन मुझे इस समय ऐसे लगता है कि तया सत्कर्मी रति वाढ़ो. रति मीन्स इंटरेस्ट, रत होना, रममाण होना, खुशी से होना चाहिए. सत्कर्म जो है वो अच्छा कर्म. हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं, कोई खुशी से नहीं करता बुरा कर्म. बुरा कर्म कभी कभी प्रसंगवश हो जाता है, कभी कभी संस्कार के वश हो जाता है, और कभी कभी विकारों के वश हो जाता है. लेकिन दिल से अगर किसी को पूछे तो हर कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, लेकिन वो होता नहीं है, और जब दुष्कर्म होता है तो उनको मुझे नहीं लगता बहुत खुशी होती होगी। मन में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, वो बोलते हैं ना, मन खाता रहता है, मन में कहीं ना कहीं खिटपिट रहती ही है अंदर। तो सत्कर्मी रति वाढ़ो मीन्स खुशी से हमें भगवान की भक्ति या भगवान को याद करना या भगवान से संवाद करना, डायलॉग, ये खुशी से होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं या भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं या नमस्कार करते हैं, वो डर के मारे करते हैं। इसलिए देखिए कैसे इंग्लिश में कहावतें भी कैसे हैं। अगर हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या कहते हैं दूसरों को, यस आई एम गॉड फियरिंग पर्सन, गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला, हमें डर लगता है भगवान से। और फिर अगर हम भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं तो इज इट गुड? आप सोचो, आप पिता हो या माता हो और आपके बच्चे हैं, और ये बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डर से, कहीं आप उनको बिगाड़ ना दो, कहीं आप उनको पनिश ना करो, इसी डर के मारे अगर वो प्यार करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये हम सोचते नहीं है, और इसलिए कहते हैं आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन। आजकल ये भी बहुत चलता है, आप व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, क्या होता है, कंपल्सिव मैसेजेस। आप ये मैसेज 100 लोगों को भेज दो, 50 लोगों को भेज दो, 25 लोगों को भेज दो, 10 लोगों को भेज दो, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। अगर नहीं भेजोगे तो डैश डैश डैश क्या हो गया। हर कोई मन में जानता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं गलती से ऐसा सचमुच ना हो, तो उससे क्या करे, भेज दो लोगों को, भेज दो, 2-3 ग्रुप बनाओ, लोगों को भेज दो, और फिर हर वही आदमी फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो ये डर फैल जाता है। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो सुख फैलाना है, आनंद फैलाना है, शांति फैलाना है। और ये सत्कर्म में रति वाड़ो, ज्ञानदेव ने, मौली ने जो कहा है, सत्कर्म में रति होनी चाहिए, रत होना चाहिए, मेरा मन उसमें रत होना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए। ये खुशी भगवान को जब हम सही मायने जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं, तब होगी। सिर्फ डर रहेगा तो खुशी नहीं होगी। हम करेंगे जरूर, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन प्यार कम और डर ज्यादा, उससे कुछ फायदा होगा? अपने आप सोचिए, कंपेयर करिए खुद से। अगर कोई डर के मारे आपसे प्यार करता है तो कैसे लगेगा? तो वही चीज अगर भगवान को भी लगती है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सत्कर्मी रति वाढ़ो, और जैसे सत्कर्म में रत होता है, मन मेरा रत हो जाता है, तो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। भूत मीन्स भूत मात्र, ह्यूमन बीइंग, जो जिसके बारे में हमने चर्चा की, बीइंग क्या है, ह्यूमन क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो एक दूसरे के तरफ प्यार, हम प्यार का भी बहुत बदनाम कर दिया है, प्यार को हमने बदनाम किया है। प्यार मींस एक ही हम देखते हैं, प्रेम, बॉडी अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण, नहीं, माँ और बेटे का प्यार, पिता और पुत्री का प्यार, इतना पवित्र प्यार है, और वो जो प्यार है इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व गाया जाता है। विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व, खाली भारत बंधुत्व नहीं है। हम ये भी कहते हैं जब शपथ लेते हैं तब कहते हैं भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, कहते हैं ना बांधव। तो हम एक दूसरे के भाई बहन है, ये रिश्ता है, ये हमने कहीं ना कहीं मान्य किया है, लेकिन खुली दिल से हम मान्य नहीं करते। भाई और बहनों एड्रेस करते हैं सभा में, जब एड्रेस करते हैं तो भाई और बहनों कहते हैं, रक्षा बांधते समय भी भाई और बहन कहते हैं, लेकिन खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते, और इसलिए प्यार जो है वो फैलता नहीं। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, मैत्री होनी चाहिए। मित्रता जो है उसमें प्यूरिटी है, मित्रता जो है उसमें खुशी है, चाहे वो मित्रता लड़का और लड़की, मेल और फीमेल उनकी भी हो, क्योंकि उनके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ है, श्री कृष्ण और द्रौपदी। श्री कृष्ण और द्रौपदी, उनका जो नाता था वो सखा और सखी का था, और सखा और सखी का जो नाता है वो बहुत पवित्र है, वो बहन से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मित्रता जो है, मैत्री जो है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तब अपेक्षा आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं रिश्ते जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, देयर इज नो चॉइस। आपके कोई भी रिश्ते हो वो आपको चॉइस नहीं है, लेकिन मैत्री, मैत्री जो है, मित्र, मैत्र, फ्रेंडशिप, यू हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस। इसलिए फ्रेंडशिप में जो मजा है वो अजीब सा है, बहुत अद्भुत है। तो ये मैत्र जीवन से उसके बारे में मावली ने कहा है, भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। तो एक बार व्यंकटी निकल गई, फिर से हम रिपीट करते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। एक बार व्यंकटी दुष्टता निकल गई और सत्कर्म के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, सारी दुनिया जो है मैत्र, मित्रता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, मधुरता आएगी और रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और यही तो हमें चाहिए। स्वर्ग का जो रोड मैप माउली ने जो बनाया है उसमें पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है मित्रता, आपस के रिश्ते जो है मधुर होने चाहिए, संबंध मधुर होने चाहिए, और यही माउली ने मांगा है पसायदान में। अभी अगला जो श्लोक है, आप अगली जो ओवी है, अगला जो लाइनर है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
4: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
5: मनावासना दुष्ट कामान ये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि नकोरे।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहाँ देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
0: है? व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: No, as a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No, I said नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
0: उनके कहने,
1: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को

0: देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल। तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
1: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
0: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन, एक दिन नहीं
1: वो
0: करते,
1: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
0: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते, हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
1: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
0: तो एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में हर एक सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील। आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल, यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस, आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग आई एम थिंकिंग लाइक दिस, बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे।
1: एक्चुअली
0: सोच तो सारा
1: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ।
0: बात सोचने की हो रही है, जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में। तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है एवरीवन इज ओके, एक घंटा आई एम नॉट गोइंग टू जज, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे सक, वी वुड से दैट एवरीवन इज सकिंग माय एनर्जी लाइक दिस, सो इट्स नॉट एवरीवन सकिंग, आई एम गिविंग माय एनर्जी
1: आउट
0: टू एवरीवन,
1: अननेसेसरी,
0: आई एम गिविंग इट आउट, एंड आफ्टर गिविंग इट आउट आई फील एम्प्टी, यहाँ खाली हो जाते हैं। और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा, इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते, तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है। फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ, मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स,
1: सो मच आउट, यस
0: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती, तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू
1: करें। एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
0: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा। एक घंटा सोचेंगे,
1: फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा?
0: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
1: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता,
0: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
1: ध्यान नहीं
0: देखा नहीं है। तो जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन, राइट ना वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन, सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग, see no one should do it unnaturally, yes, yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है, आप अपना नॉर्मल चलो जैसे आप चल रहे हो, सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो, और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके, for 1 hour I am not going to create.
1: Yeah, aisa kind of sochein ki wo please aisa kare, because we have to be very very clear कि हमें क्या नहीं सोचना है.
0: एब्सोल्युटली. और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे है
1: अच्छे.
0: इट्स ओके. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई एग्री विद
1: यू. मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटैलिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता यह है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
0: यू नो इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट.
1: Yeah, because there's nothing like negative.
0: We are different. मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव. लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है?
1: गलत हो गया.
0: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से. दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर.
1: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए कि टाइम पे आना तो इट्स अ
0: सी. मर्यादाएं भी कौन बना रहा है? इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड their own culture, their own way of living. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, they're just both right for them. But हम तुरंत judgmental हो जाएंगे.
1: देखा
0: ये right है, वो वाला wrong है, या ये वाला right है. No, it's not. It's just that it's different. जैसे हम right और wrong उसको label कर देते हैं तो energy change हो जाती है. See, if I say you're different from me, it's a different energy. But if I say you're wrong, it's a different energy. It's a different feeling. So when I create this thought about anyone, कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार. लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hain. Between a parent and a child, ये बहुत critical है.
1: Even husband wife, you know.
0: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज़्यादा ये authority के साथ हर time हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. See, again, intention बहुत अच्छी है. कई बार intention बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको empower करना है ना, लेकिन जगह हम ये energy भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे.
1: अगर कोई drugs ले रहा है या smoke कर रहा है या drink कर रहा है, how do we take it? You know, this is again, it's very difficult, because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop.
0: He needs to change is a different energy, and he is bad is a different energy.
1: Actually, I consciously tried to be not create the thought, but the first thing which comes to your mind is this is wrong.
0: Yeah, this. अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
1: और हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था,
0: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिमुलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
1: rejection,
0: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं. ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है. ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए. आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो.
1: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप, यस.
0: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
1: तो आई एम नॉट बैड,
0: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
1: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग,
0: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
1: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
0: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है, एक तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. 25 टू 30 थॉट्स
1: पर मिनट,
0: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माय प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी
1: इट्स ऑल वेस्ट एक्चुअली. मैक्सिमम टाइम्स यू नो.
0: तो उसमें कई थॉट्स बहुत पावरफुल पॉजिटिव होते, कई नेगेटिव होते हैं, गुस्सा, रिजेंटमेंट, चिंता. कई नेसेसरी होते हैं कि ये करना है आज, ये जान. और बहुत सारे वेस्ट होते हैं. वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ तो वो ठीक हो गया. से आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीजों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती
1: है. तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम से वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
0: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
1: इसको बाहर नहीं जाने देना,
0: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
1: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
0: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया
1: तो जब वो नहीं होगी तो आप.
0: हाँ, और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
1: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो
0: इट गिव्स अ वेरी
1: पिट ऑफ माय स्टमक. ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
0: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई दे
1: शरीर पर.
0: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल, एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है. Physiology पर तो दिखाई दे रहा ना तुरंत. You will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ. डिस्टर्ब हुए बना, और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24 आवर एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये, तो ये है सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से, इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव. डेफिनेटली.
1: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है, एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिसे शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें.
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें. लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बींग. आई द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट हैज अ चॉइस. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी. चाहे कोई कुछ भी कहे, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है. एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते. अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें. आई एम स्टेबल. उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते. आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग. ओम शांति.
1: ओम शांति. अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, जिन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है. तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.